0: हजुरको रेडियो 102.1 मेगाहर्ज।
1: लौ आयो है क्वालिटीमा नम्बर 1, दाममा सबैभन्दा कम।
2: ओ प्रकाश।

अक्सम अदाएं ब्यूटीफुल है, जानती हूँ मैं तुझे तो कितना ब्यूटीफुल है। लुक ये मेरा अक्सम अदाएं ब्यूटीफुल है, जानती हूँ मैं तुझे तो कितना ब्यूटीफुल है, जानती हूँ मैं तुझे तो कितना ब्यूटीफुल है। अरे शादी

अरे ताजमहल बनवाना शाहजहां की भूल है, उसके पास पैसा अपने हाथ में तो फूल है। तूने गुस्से में, तूने गुस्से में फोन मेरा काटा, तो आशिक सरेंडर हुआ।

0: सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और तीन बजाती हुई नागिन।
1: शेख ये बात ही गया।